जिन शिरिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हारे तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

मैं कहया सब हुक्माहो जियो, हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाहो जियो। ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी,

0: सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचा नाही, मनसा सत समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया, भले सेवन जारे ते जेड़े निर्मल हो गए ने कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे। गुर नाले सतगुरु की बाणी पढ़ने जे निम्रता होवेगी, जे सजना तेरे अंदर नीवियां नू प्यार करन दी ताकत होवेगी, ते तेरा अंदर होवे निर्मल, ते जे मैल रखी ना ते फिर बाबा जी कहणगे जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। जिन्ना मर्जी तू रब नू पुकारी रब कदी मिलना नहीं, पर भगत कबीर साहिब मुताबक जे तू अंदर नू निर्मल कर लै ते फिर तू रब दे पिछे नहीं, तू अगे होवेगा ते रब आवाज मार के कहेगा ओ निर्मल हिरदे वालिया तू मेरी गल सुन जा, क्योंकि मैं तेरे अंदर टिकना चाहना, मेनू मैले हिरदे दे विच कदी टिका नहीं मिलता हुंदा। साहब ने ताई क्या कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछा लागो हर फिरै कहत कबीर। कबीर मैं अर्ज कीती विशा सी के पानी जेड़ा ओदे विच सिखी दियां कुछ निशानियां ने, पानी सब तो नीवें सिखी विच निम्रता है, पानी निवान नू जांदा है, सिख नीवियां नू ने करदा है, पानी विच निर्मलता है ते सिख दा हिरदा भी जेड़ा ओदा तीजा गुण है ओ निर्मल हुंदा है। अगला गुण ओदा है शीतल है, सिख शीतल किवें में, अगला गुण है ओ शुद्ध किवें में, ए आपां आउण वाले एतवार कोशिश करांगा के पूरा हो जाए विशा। इनियां कु बेनतियां प्रवान करनियां, धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करके जो कहने आ कमाई करन दी सूझ बख्श दे। मैं फिर आप सब दा कोटान कोट अज धन्नवाद करना जिन्ना ने ए सर्व संपत्ति नाल फैसला कीता है कि गुरु का लंगर पंगत विच बैठ के छकना है। गुरु नानक साहब मेहर करे साडा आपसी प्रेम वध जाए, असी गुरु नानक साहब दी कृपा नाल एक दूजे नू अंदरों ने करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।
1: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सै भंग गुर प्रसाद।

जियड़ा अग्न बराबर तपै पितर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसी अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रह जा सुमंत्र मान वैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितनी कु सूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण कीता है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइयै, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अमेओ चुआइयै। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है

साहब गुरु तेग बहादुर झोली विच रहमता पांदे ने। मैं सिर्फ बेनती कर लगा कि देखो सतगुरु ने जो शब्द लाए ने उन्हें पहला बचन किया कह लगे प्रथम भगौती सिमर कह गुरु नानक लई त्याहे त्योना किया गुरु नानक साहब जी ते गुरमुख जदों गुरु नानक साहब कृपालू जी का नाम आंदा है आदि गुरु ने धुर दरगाह तो गुरु बन के आए ने उन्हां दे त्यौण दी गल कीती ते अगों फिर शुरू कीता कहन लगे गुरु नानक लई त्याहे फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय सहायता मंगी फिर अर्जुन गुरु रामदास जी दी सहायता अर्जुन हर गोबिंद नूं सिमरौ श्री कर रहा है पहला त्याया फिर सहायता फिर सिमरिया ते जदो गुरु हरकृष्ण साहब जी दा नाम आया ते उथे एक तुक पूरी गुरु हरकृष्ण साहब जी ले गई ओ तुक सी के ऐ सिखो के गुरु हरकृष्ण साहब जी दे दर्शन करिए ते दो कटे जांदे ने ते अज दे सी पढ़े लिखे वर्ग ने कहना सी दर्शन तां उन्हां कीते जेड़े 1664 सन हुण दर्शन किवें ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने तू रसना नाल त्याई लई सच जानी ध्यान वालियां दे भी दो कटे जांदे अरदास सी रोज करने आ के श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए सतगुरु 1664 नूं अपने शरीरक चोले नूं इत्थे समेटदे पए ने प्यारियो जिस दिन दुख कट्टण दी गल चली ते अज तीकरां सी कहिंदे आ हजारां लोक उन्हां दे मंजे मैदान विच वी रख दिते गए ते गुरु हर कृष्ण साहिब जी दी अमृत दृष्टि ने लोकां दे तन दे रोह खंडन कर दिते क्योंकि गुरु जी का सुभाव बिरद कह के जीव का भला करन लई ओ कोई जुगत भी वरत सकते हैं। सुखमनी साहब आपां पढ़ने हैं सच्चे पातशाह ते कहिंदे ने दर्शन भी दो करदे ने बचन सुन के भी रहमत मिलदी है चरण परस के भी कृपा मिलदी है ते बाबा जी दे सी बचन पढ़ने हैं सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह कवे सुनकर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतिया ने ए सारी गुरु कृपा करन दी जुगत है किसे नु दर्शना विचो किसे नु चरना विचो जिस दिन गुरु हरकृष्ण साहब ने रहमता वरसाइया उस दिन हजारा लोग दिल्ली दे अरोगता लेके गए 11 साल सिर बतीत होए अरोगता लैण वाले सारे धर्मिया की भीड़ नहीं बेनती समझो अपने स्वार्थ नु अपने सुख की भाल विच आए उस दिन हजारा की तादाद विच आए ते जिदन ऐसे धरती ते 11 साल बाद मेरे साहब धन गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दा जाम पीता उदन सिर्फ 4-5 निकले जेड़ा एक शीश लैके चला गया दूसरे धड़ लैके चले गए पीड़ हजारा दी सी पर धर्म कमाण वाले 5-7 ही सन कदी पीड़ धर्म नहीं खुंदी प्यारियो बाबा जी ने बाणी विच इसका निर्णय किया गुरसिख जेड़े बाणी पढ़ते ने ओह कदी भरमणगे नहीं भरमेगा ओह जेड़ा गुरु दे शब्द तो दूर चला जाएगा जिदे चार च फेरे गुरु दे शब्द दी चौंकी है ओनू प्यारियो भरमण दी लोड़ ही नहीं साहब कृपालू जी ने मेहर कीती है ये कदी भी मापदंड ना रखिए कि फलाने इंसान पिछे बहुत संगत फलाने धर्म पिछे बड़े लोग नहीं गुरु साहब कहिंदे ने पूज लगे पीर आखी है तन गुरु नानक साहब जी उथे राजे की गल नहीं कीती पीर की गल कीती पूज लगे पीर आखिया सब मिला संसार नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार सारे लोग ओदी जय जयकार करन पर प्यारियो जे साईं दे दर ते परवान नहीं ते उस भीड़ नूं की करांगे पूज लगे पीर आखिया सब मिला संसार नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार जां पत लेख ना पवे सबा पूज खुआर जेड़ी पूजा करांदे रहे सारी खुआरी पल्ले पैगी ते जेड़ी मैं बेनती कर रहा सा फिर अपने विषय त्यावा हुक्म किए मन भाव दे ते बाबा नानक जी कहिंदे ने केड़े हुक्म कीते जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए इथे विरोधी भी कोई ना होवे चंगा नौ रखाए कह जस कीरत जग ले पर गुरमुखो जे तिस नजर ना आवई
ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ।

महापुरशां तों अमृत दे संबंध विच विचारां सरवण कीतियां ने, क्योंकि पिछले कुछ दिनां तों निरंतर आपां अमृत दी गुरबाणी दी रहत दी गल करदे आ रहे हां। ते आखिर इस विचार दा भाव केवल इतना है कि किते अमोड़ मन दियां वागां सतगुरु दे हाथ विच पकड़ा दईए ते एक गुरमत दे गाड़ी राह उत्ते चल पवे। आओ करो कृपालता साध संगत जी कि पिछले कुछ दिनां तो आपां एक लड़ी आरंभ कीती है। पहले दिन जिस दिन वैसाखी दे संबंध विच विचार आरंभ कीती सी, आरंभ वाले दिन बेनती कीती सी कि इस जीव दा सतगुरु दे शब्द तो बिना सहारा कोई नहीं। दूसरे दिन बेनती कीती सी कि अमृत दी दात अमृत है कि कल आप जी दे समक्ष वैसाख दे महीने और वैसाखी दे संबंधी विचार कीते सन। ते देखो ऐद की मालक ने सबब किहो जिहा बनाया है। कई बारी कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां ने जदों कुदरती तौर ते इतिहासिक घटनावां मेल खांदियां ने ते मनुख दा अंदर प्रसन्न हो के कहिंदा मेरे दाता साडी कीती हुई इस सेवा नूं तुसीं कबूल करदे पहो। कल बुधवार सी, वैसाख दा महीना सी आरंभ होया, उस दिन दातार जी ने अमृत दी दात दित्ती। मैं हैरान होया, रतन सिंह भंगू दा प्रचीन पंथ प्रकाश अज पढ़ रहा सां, वह कहिंदा सन 1756 नूं जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत दी दात दित्ती उस दिन भी बुद्ध वेले दा बुधवार दा अमृत वेला सी। कल भी बुधवार सी ते जिस दिन कलगी वाले ने अमृत दी दात दित्ती उस दिन भी बुधवार सी। आओ गुरमुखो, जेड़ी विचार आपां कल छड्डी सी, क्योंकि लड़ी दा ख्याल जरूर अत रखिए, आपां विचार आरंभ कीती सी वैसाख भला साखा वेश करे धन देख हर द्वार, आओ दया करे कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुत बिन अड ना मोलो कह लगे कीमत कौन करे तुद पावा, देख दिखावे ढोलो कह लगे दूर न जाना अंतर माना, हर का मैल पछाना नानक वैसाखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन मन। आओ इसे शब्द नूं आपां अगे लै तुरने, गल अमृत दी होनी, आपो अपना ढंग है, आपो अपनी गल करन दा तरीका है, पर गल करन दा मकसद केवल कलाकारी नहीं, गल करन दा पावे साडे कहण वालियां विच ते सुनन वालियां दे खिरदे विच गुरु दा शब्द ते गुरु का अमृत टिक जाए। आओ करो कृपा साध संगत जी, विचार आरंभ करन तो पहला आप एकाग्रता इसे तरह बख्श देखो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब धन गुरु नानक साहिब जी का तुखारी राग का यह वचन के वैसाख दे महीने विच एक जीव इस्त्री जां एक जगयासु उस परमात्मा दे चरणां विच बेनती करदा है, मालक जी वैसाख दे महीने विच रुखां दियां करुंबलां नवियां निकल आईयां ने, उन्हां ने शिंगार कर लिया है पुरातनता नूं त्याग के, मैं अपने तन ते शिंगार कैसा करां ते अपने घर दा दरवाजा खोल के तेरी इंतजार पे करनी आ कि तुसीं दया दे घर विच आ के मेरे घर विच चरण पाओ। ध्यान दिया जे जल जाना आपां अमृत वाले पासे। पहलियां तुकां सन के वैसाख भला साखा वेश करे तन देख है हर द्वार, तन दा अर्थ जीव रूपी इस्त्री, क्योंकि बाणी विच तन दा अर्थ दो तीन आए ने, खास करके तन दा अर्थ हुंदा दौलत, तन दा अर्थ हुंदा इस्त्री, तन दा अर्थ कच्ची दौलत, तन

पुरख गुरु अर्जुन पिखो नयन अब रखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सुदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए

महाराज ने जी, जिन्हों मर्जी है साडे गुरु ने जी, जिन्हों मर्जी असीं इहदे कोल नाम लै लिया जी, जिन्हों मर्जी अपना गुरु बना के बह गए। असल विच साडा पूरे गुरु ते विश्वास खत्म हुंदा जा रहा। बहुत सारे इहो जिहे जगियासू ने जिन्हां ने पता नहीं किन्ने कु गुरु बनाए ने, किन्नियां दे अगे सिर झुकाए जांदे ने ते विश्वास किसे ते भी नहीं। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से वन जा रहे। पर सिख संगतां विच जागृति सी। देखो गुरु तेग बहादुर साहब दे समय मसंदा ने घट कीती, 22 मंजियां ला के बह गए, पर एक कला बाबा मखन शाह लुबाणा आया, उन्हें ऐसी जागृति लियांदी, सब दे बोरी बिस्तरे गोल करके पजा दिते। कोई लड़िया थोड़ी हो, उन्हें ज्ञान की गल की। ज्ञान होना चाहिए हर सिख दे कोल, सोझी होनी चाहिए हर सिख दे कोल। जदों असीं सोझी साडे कोल नहीं आती, फिर जिहड़ा मर्जी अपने पिछे ला के तुर पैंदा है, फिर जिहड़ा मर्जी अपने पिछे ला के तुर पै, सोझी नहीं हैगी। गुरु हरि साहब जी नूं गुरता गद्दी बख्श दित्ती गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। ते कुछ दिन गुरु हरगोबिंद साहब आप रहे, पर गुरता गद्दी ते गुरु हरि साहब बहिंदे सन, आप थले बहिंदे सन। इत्थे कुछ दिन बाद गुरु हरि साहब जी ने शरीर त्यागया। इतिहास लिखदा कुछ प्रेमियां ने नाल चिखा ते छालां मारियां। गुरु हरि साहब ने सख्त हुक्म किया, कहने लगे गुरु का सिख नहीं होगा जिहड़ा हुण नाल होर छाल मारेगा, वापस हो जाओ, सब पिछे हो जाओ। गुरु हरगोबिंद साहब जी का संस्कार हो गया, सारा कुछ हो गया, ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी अपने परिवार नूं नाल लैके बाबे बकाले आ गए। बाबा सूरज मल, बाबा अनी राय जी इसे कीरतपुर साहब दे विच रहिंदे सन। गुरु हरि साहब महाराज जी ने 14 साल की उम्र विच गुरता गद्दी प्राप्त की। यह जिम्मेवारी, यह भार उन्हां दे सिर ते आया। गुरु हरि साहब ने इतनी बाखूबी अपनी जिम्मेवारी नूं निभाया कि दुनिया आशा कर उठी। सतगुरु पातशाह ने गुरु हरगोबिंद साहब ने एक बचन पुछिया सी कि यह जिहड़ियां फौजां ने हुण जंग जुत ते गल नहीं हैगी, यह फौजां नूं की करना है। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी कि 2200 घोड़ सवार शस्त्रधारी योधे तुसी हर वेले अपने नाल रखने ने। 2200 लड़न की नौबत नहीं आएगी जी, आ जाएगी तो जूझने। पहली गल तो लड़न की नौबत नहीं आएगी, जे लड़ना पेगा तो फिर लड़िया जाएगा। 2200 घोड़ सवार हर वेले अपने नाल रख दे। कीरतपुर साहब दे विच दो चीजा बड़िया वेखण वालिया सी। असी कीरतपुर साहब नूं सिक्खी दे नक्शे विच बहुती इंपोर्टेंस नहीं दित्ती। कदे वेखना कीरतपुर साहब गुरु हरि साहब दा जन्म होया, गुरु हरि साहब इत्थे ज्योति ज्योत समाए, कीरतपुर गुरु हरकिशन साहब पातशाह जी दा जन्म होया, कीरतपुर साहब गुरु हरगोबिंद साहब रहे, कीरतपुर साहब कुछ महीने धन गुरु तेग बहादुर साहब भी आके रहे। शीश महल गुरुद्वारा साहब उत्थे बने हैं, पर साढ़े बहुत सारे सिख ने, माफ करना मैं बेनती कर लगा कि हेमकुंड साहब ते कई बार जाए होंगे, बहुत सारे कीरतपुर साहब उस स्थान ते नहीं गए होंगे, जाना चाहिए अपने इस इन्हां महान तीर्थां नूं। साढ़े असल महान तीर्थ ने, इन्हां नूं इग्नोर नहीं करना, इन्हां वल पूरा ध्यान देना। गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हरि साहब ने दो चीजां इत्थे कीरतपुर साहब च विशेष कीतियां, एक डिस्पेंसरी बनाई ते एक जू बनाई, चिड़ियाघर। इतिहास लिखदा शिकार खेडन जांदे सन, किसे जीव नूं मारदे नहीं सी, जिहड़ा फटड़ हो जाए उस नूं लिया के उत्थे दुआ दारू करदे सन। बाहरों कोई जीव फटड़ मिल जाए उन्हूं लिया के उत्थे दुआ दारू किया जांदा सी। जू दे विच हर तरह का जानवर रखिया होया सी। ते इतनी वड्डी डिस्पेंसरी सी गुरु हरि साहब दी, तुसी कदे इमेजिन करोगे हैरान हो जाओगे। शाहजहान दा पुत्तर दारा शिको, सब तो वड्डा पुत्तर सी दारा शिको, ते सब तो छोटा पुत्तर सी औरंगजेब। शाहजहान दा झुका सी कि मैं अपने वड्डे पुत्तर दारा शिको नूं गद्दी देनी, क्योंकि संत रूप सी, बहुत भगती वाला, बहुत चंगा इंसान सी। दारा

करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

0: जंगल के जमाने की गल करते इन्ना झूठ, इस झूठ में किसने मनना है, किसने कबूल करना है। तो घूमदिया फिर बाहर मैं अनेक इस ढंग के कुछ वीर मिले, हिंदुओं का भी तल्लुक रखते सन, कह लगे गल सानू समझ आ रही है, आ रही है, सच हौले हौले दिखाई दे रहा है। मैं तो ठीक है, शुक्र है थोड़िया धुंधलिया अखा च कोई थोड़ी थोड़ी रोशनी आन लगी, सानू सच दिखाई देन लग पाया, सानू जो असलियत का बोध जो है आन लग पाया। वरना आदकाल तो ऐसा देखने दे चाहे आदकाल तो मुराद गुरु नानक देव जी महाराज तो मुखालफत आरंभ
1: हिंदू वन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा जिदे कोल ज्ञान है सच दा ईश्वर दा सच तिन वास्तविक सियाणा ते होइए नामदेव जी महाराज कहिंदे ने। बकेटे पत्थर नूं भगवान मन लेगा सच नूं भगवान नहीं मनदा, पत्थर नूं मत्था टेक लेगा सच नूं मत्था नहीं टेकदा, सच्चाई नूं मत्था नहीं टेकदा। सच्चाई की है इहदे बारे सोचने की कोशिश नहीं करता और सच के हक में नारा बुलंद करने की भी जो है कोशिश नहीं करता। और खास करके पंजाब के खिमे करने कुछ माशा अखबारों ने तो इस ढंग का झूठ बोलिया, कहना ही पाया कि रोम रोम के झूठ इतना समा गया है कि हुण सच बयान करना इन्होंने बहुत औखा है। और इस झूठ का ही पसारा समुचे देश में आता रहा। साड़ी एक गलत तस्वीर जो बड़े सोहने ढंग 500 साल गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तामीर की सी, बनाई सी, उसारी सी, उन्होंने इन्होंने दावे किया झूठ बोल बोल के, झूठ लिख लिख के। सिख का सोहना तस्वर, सिंह की सोहनी ये मूर्ति, ये परोपकारी, ये दयालु, ये उसारू रुचिया का मारक, ये वीर रस का जो है धनी, यदि जी तस्वीर धुंधली पेश की थी, ये डाकू है, ये जालम है, ये जाबर है। इस ढंग का गलत रूप पेश किया। जवाब साढ़े को कुछ नहीं, ना कोई अखबार, ना रेडियो, ना टीवी, तो गलत तस्वीर बनती गई बनती गई। और खिमा करनी 500 साल का साडा सुनहरी इतिहास इन्हों दो साल धुआंधार झूठे प्रचार ने दावे किया। मैं अज थोड़े चरणों च बेनती करांगा कि दो साल इन्होंने झूठ बोल के जिहड़ा साडा इतिहास दावे कीता है, असी ये सिंह साहबान की बुलाई हुई इस कन्वेंशन दे वध तो वध एकत्रता ते समर्थन दे के उन्हां दावां नूं तोड़ना है जिहड़े दाव इन्होंने दो साल दे लाए ने झूठ बोल बोल के। तो खैर मैं संक्षेप में जो है अर्ज करा, साहबां दा अज जिहड़ा पावन पवित्र वाक आया उहदे च गल इन्नी है कि मन जिस दे नेड़े आवे उसका प्रभाव कबूल करता है। मन परमात्मा दे नेड़े है, नहीं पदार्थ के नेड़े है, तो पदार्थ का प्रभाव ज्यादा पदार्थ झूठ, तो झूठे पदार्थों का जिन्हों के ज्यादा प्रभाव है वह तो अज भी गुरु का साथ नहीं दे रहे, अज भी पंथ का साथ नहीं दे रहे। तो फिर मैं लवज दोहरा देना, साहिब संकट वे सेवक भजे, चिरम काल ने जीवे दो कुल लज। मालिक संकट दे चाहे, पंथ संकट दे चाहे, गुरु संकट दे चाहे, ते तू अज नशे ते भजे। बड़े बड़े संत मंद डेरेदार इस देश दे साड़ी उम्मत दे मौजूद ने, जिन्हां दे कदमां दे उत्ते मत्था टेकदे आ असीं थकदे नहीं। ते खिमा करनी हुण देखना है कि इस विपता दे समय कौन कौन साथ देंदे ने, कि सिर्फ अपनी पूजा ही करानी है इन्हां ने, सिर्फ साडे मस्तक इन्हां ने अपने कदमां ते झुकाने ने, या इस विपता दे समय साथ भी देंदे ने। इस कन्वेंशन दे सारियां नूं सद्दा पत्र दिता गया, राजियां, प्रचारकां, प्रबंधकां, संतां, मंतां ते तमाम गुरमत हितैषियां नूं सद्दा दिता गया। ते मैं इत्थों ये दो लफ्ज जो है इस वास्ते तुहानूं याद करा रहा कि कौन साथ दे रहा है, कौन आएगा, कौन आहदा नारा जो है मारदा है भी जुलम है, वो अज भी गुरु का साथ नहीं दे रहे, अज भी पंथ का साथ नहीं दे रहे। ते फिर मैं लवज दोहरा देना, साहिब संकट वे सेवक भजे, चिरम काल ने जीवे दो कुल लज। मालिक संकट दे चाहे, पंथ संकट दे चाहे, गुरु संकट दे चाहे, ते तू अज नशे ते भजे। बड़े बड़े संत मंद डेरेदार इस देश दे साड़ी उम्मत दे मौजूद ने, जिन्हां दे कदमां दे उत्ते मत्था टेकदे आ असीं थकदे नहीं। खिमा करनी हुण देखना है कि इस विपता दे समय कौन कौन साथ देंदे ने, कि सिर्फ अपनी पूजा ही करानी है इन्होंने, सिर्फ साडे मस्तक इन्होंने अपने कदमां ते झुकाने ने, ಯಶ್ ಗುಪ್ತಾ ದಿಶಾ.

फिर परमात्मा दी ते कोई लोड़ ही नहीं। बंदे नू दो चीजा चाहिए ने, सिद्ध और बुद्ध। बुद्धि विच सारा ज्ञान आ जांदा, सिद्धि विच सारी संपदा आ जांदी है। तो सारी संपदा बंदे नू मिल जाए, सारा ज्ञान बंदे नू मिल जाए, तो होर किसी चीज की फिर लोड़ रहिंदी नहीं, मनुख दे अंदर कोई भुख रहिंदी नहीं। पर परमात्मा तो छुट, परमात्मा नू एक पासे रख के सनातन मत ने इस भुख की पूर्ति गणेश से सृष्टि नाल जोड़ी। वो सृष्टि जो है वो बुद्ध दाता है और गणेश जो है ये सिद्धि दाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मंगलाचरण आरंभ किया है उसका पहला अक्षर है एक, एक ओंकार। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पहला अक्षर एक, और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जो मंगलाचरण है, गुरमत दे जो मंगलाचरण है उसका पहला अक्षर है एक। जपजी साहब का जो मंगलाचरण है उसका अक्षर पहला है एक। एक गिनती दे से उंज हिंसा है, पर गुरु नानक की रचना तो हिंसा के रूप च नहीं निकलिया, एक खसम की बाणी ब्रह्म वाक के रूप च निकलिया है एक। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। फिर साहब ऐसा भी कहंदे ने एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप, अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। सारी अनेकता का जो आधार है वो एक है, ते इसे एक तो ये सारी अनेकता का जन्म है, एक मूल है, एक जो है आधार है। लेकिन एक ने ही अनेका रूप धारण किए हुए ने। जो अनेकता है इनु संसार कहने ने, जो एक है वो करतार है। जिथे तक आत्मा का गल है, विचार चलेगी आत्मा दी उसे एक है साढ़े शरीर दे, पर जिथे तक शरीरक संबंध की गल आएगी तो रूप बड़े ने। हुण एक बंदे दे सिर्फ है कोई एक ही रूप दे उत्ते उदी होंद नहीं खड़ी, अनेका रूप ने। एक बंदा जे किसे दा प्यो है तो फिर किसे दा पुत्र भी है, जे किसे दा पुत्र है किसे दा पति भी है, किसे दा भरा भी है, किसे दा पड़ोसी भी है, किसे दा दोस्त भी है। बंदा एक है ते रूप उसदे इतने ने। मनोविज्ञानी कहंदे ने जद बंदा पुत्रां दे सामने पिता दे रूप दे जांदा है ते चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक मंडल कुछ होर हुंदा है। ओही मनुख जद प्यो दे सामने पुत्र दे रूप च जांदा है ते चेहरे दे हाव भाव ते मन दे भाव कुछ होर ही हुंदे। ओही मनुख जद पत्नी दे सामने पति दे रूप दे जांदा है ते चेहरे दा रूप ते मानसिक मंडल मनुख दा कुछ होर हो जांदा है। ओही मनुख जद मित्र दे सामने मित्र दे रूप च खड़ा हुंदा है, पड़ोसी दे सामने पड़ोसी दे रूप च खड़ा हुंदा है, तो चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक संस्कार कुछ होर आउंदे ने। ओही बंदा जद गुरु दे सामने सिख दे रूप च खड़ा हुंदा है तो चेहरे दे हाव भाव ते मन दीआं तरंगां कुछ होर आउंदीआं ने। हुण बंदा एक है ते रूप इस दे इतने ने। ये किसे दा सिख भी है, किसे दा पुत्र भी है, किसे दा भरा भी है, किसे दा पिता भी है, किसे दा पति भी है, किसे दा पड़ोसी भी है, किसे दा दोस्त भी है। जितने रूप पुरुष दे ने उतने ही ये रूप नारी दे ने। जे नारी किसे दी मां है तो किसे दी भैण है, किसे दी धी है, किसे दी पत्नी है, किसे दी सहेली है, ते किसे दी सिखणी है। मनुख पूरन ओही है जिदे ये सारे रूप बेदाग होवन। ये सारे रूप मैं हैरान हा जिन्हां दे हथ सता आउंदी है, कई दफा देखी दा समुचा देश ते ओदी सारी ताकत किसे दे हथ समेट देदी है, ते कम से कम ओदे सारे रूप ते देखने चाहिदे ने। किधरे ऐसा तो नहीं ओदे सारे रूप दागी ने। जो मेरे पढ़न दे चाया चंगी पुत्री नहीं साबत हो सकी, पिता पिटदा ही रहा, आले दुआले दे बुजुर्ग मुखालफत करदे रहे पिता दा दिल तोड़ के, और चंगे चंगे बुजुर्गां दी विचारां ते लत मार के उन्हें कदम चुकया, चंगी पुत्री नहीं साबत होई। अगाह चलिए फिर चंगी पत्नी भी नहीं साबित हुई। पति हस्पताल दे बीमार पिया रहा, तलाक हुई, पुछण तक नहीं गई, चंगी